हर पल हर दिन भारतीय संगीत का ये रागम डीटीएच चैनल। संत तुलसीदास की ये रचना प्रस्तुत है मन्ना डे के स्वर में। बोल तहिते आयो शरण सवेरे।

हर पल हर दिन भारतीय संगीत का ये रागम डीटीएच चैनल है। लीजिए सुनिए आलोक गांगुली के स्वर में ब्रह्मानंद की ये रचना, सुनो सुनो ध्यान से प्यारा।

0: You are listening to vocal recital by Shri Kumar Maradur. He was accompanied on tabla by Shri Uday Kulkarni and harmonium by Shri Shrikant Kulkarni. Continuing the concert, now listen to tabla solo by Pandit Raghunath Nakod. Taal, teen taal.
1: आप सुन रहे थे श्री कुमार मडूर का गायन. आपके साथ तबले पर श्री उदय कुलकर्णी और हारमोनियम पर श्री श्रीकांत कुलकर्णी साथ दे रहे थे. कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे पंडित रघुनाथ नाकोड़ का तबला सोलो. ताल तीन ताल.

ゲンダだ。

0: You were listening to Tabla Solo by Pandit Raghunath Nakod. He was accompanied on violin by Sri Shankar Kabadi. This program was contributed by Akashwani Dharwad, Anytime Indian Music.
1: अब तक आप सुन रहे थे पंडित रघुनाथ नाकोड का तबला सोलो. आपके साथ वायलिन पर श्री शंकर कबाड़ी साथ दे रहे थे. यह कार्यक्रम आकाशवाणी धारवाड़ द्वारा पेश किया गया.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर

0: उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। आज के इस कार्यक्रम में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत प्रस्तुत है राग बिलास खानी तोड़ी में ख्याल गायन। आज के हमारे कलाकार हैं मोहन सिंह खांगूड़ा। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं सत्यव्रत चट्टोपाध्याय और हारमोनियम पर रथिंद्रनाथ चक्रवर्ती। तो आइए सुनते हैं राग बिलास खानी तोड़ी में ख्याल गायन। कलाकार हैं मोहन सिंह खांगूड़ा।
1: Hello and good morning. This is Ragam, 24/7 on DTH, anytime Indian music. This morning we first present a Hindustani vocal recital. Listen to a khayal in the rag Bilas Khani Tori. Our artist this morning, Mohan Singh Khangura. The accompanying artists are Shottobrata Chattopadhyay on the tabla and Rathindranath Chakraborty on the harmonium. Listen then to a khayal in rag Bilas Khani Tori. Our artist is Mohan Singh Khangura.

0: आज के इस कार्यक्रम में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप सुन रहे थे रागदास खानी तोड़ी में ख्याल गायन। कलाकार थी मोहन सिंह खांगूड़ा। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे सत्यव्रत चट्टोपाध्याय और हारमोन पर रथिंद्रनाथ चक्रवर्ती। ये है रागम, 2400 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्य को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आइए अब सुनते हैं तबला वादन। तीन ताल प्रस्तुत करेंगे अशोक कुमार मोइत्रा। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं प्रशांत सिन्हा। तो आइए सुनते हैं तबले पर तीन ताल, कलाकार हैं अशोक कुमार मोइत्रा।
1: यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल, अ ख्याल इन राग बिलास खानी तोड़ी। आवर आर्टिस्ट वॉज मोहन सिंह खांगूड़ा। Accompanying the artist was Shottobrata Chattopadhyay on the tabla and Rathindranath Chakraborty on the harmonium. This is Ragam, 24/7 on DTH. Anytime Indian music. Continuing our morning concert, now listen to a Hindustani tabla recital by our next artist, Osh Kumar Moitro. Tal, Teen Tal. The accompanying artist is Prashanto Shingho on the harmonium. Listen then to a tabla solo in Teen Tal. Our artist is Ashok Kumar Moitro.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप सुन रहे थे तबला वादन, ताल तीन ताल। कलाकार थे अशोक कुमार मोइत्रा। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे प्रशांत सिन्हा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की प्रस्तुति थी। रागम 2400 घंटे सातों दिन ETH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a Hindustani tabla recital in teen taal performed by Ashok Kumar Moitro. Accompanying the artist was Prashanto Singho on the harmonium. This program was recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for the Ragam channel. Anytime Indian music 24/7.

0: This is Ragam 24/7 DTH, Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। सुनते हैं शास्त्रीय गायन, कलाकार है सीमा रानड़े। प्रारंभ में आपने प्रस्तुत किया राग रागेश्वरी, सुनते हैं विलंबित एकताल में निबद्ध के बोल है आलीरी पलक न लागी, और द्रुत आधा त्रिताल में निबद्ध रचना के बोल है लगन लागी तुम्हारे दर सकी। सात संगत तबला माधव मोड़क, हारमोनियम शुभांगी भवसार।

और अब सुनते हैं सीमा रानड़े द्वारा प्रस्तुत राग रामकली, विलंबित एकताल में निबद्ध रचना के बोले माँ छरिया मेहंदी, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोले सखीरी मेरे मन की। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे हैं माधव मोड़ा, हारमोनियम पर शुभांगी भवसार। तो आइए सुनते हैं राग रामकली, कलाकार सीमा रानड़े।

श्रोताओ, अभी आपने सुना सीमा रानड़े द्वारा प्रस्तुत राग रामकली। आपके साथ तबले पर थे माधो मुणो, हारमोनियम पर शुभांगी भवसार। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है मुजाहिद हुसैन खां का गाया राग पूरिया कल्याण. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है. बोल हैं आज सो बना ब्याहन आया, और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है. बोल हैं मोरे घर आजा. तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने, और हारमोनियम पर अशोक कुमार ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ हैव फॉर यू अ वोकल रिसाइटल बाय मुजाहिद हुसैन खां, accompanied on the tabla by Vinod Pathak and on the harmonium by Ashok Kumar. Mujahid Hussain Khan first presents rag Puriya Kalyan, in which you will hear the Vilambit Khayal set to Ek Tal, and this will be followed by the Chota Khayal set to Drut Teen Tal.

0: अभी आप मुजाहिद हुसैन खां का गाया राग पूरिया कल्याण सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने और हारमोनियम पर अशोक कुमार ने। और लीजिए अब सुनिए राग मालकौंस। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं पीर न जानी बलमा, और तराना तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने और हारमोनियम पर अशोक कुमार ने।
1: यू जस्ट हर्ड राग पूरिया कल्याण। कंटिन्यूइंग विद हिज वोकल रिसाइटल, वी नाउ हैव मुजाहिद हुसैन खान presenting Rag Malkons, in which you will hear the Bada Khayal set to Vilambit Ek Taal, followed by a Tarana set to Teen Taal.

0: अभी आप मुजाहिद हुसैन खां का गाया राग मालकों सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने और हारमोनियम पर अशोक कुमार ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद राग मालकोंस वी कम टू द एंड ऑफ द वोकल रिसाइटल बाय मुजाहिद हुसैन खां। ही वाज अकंपनीड ऑन द तबला बाय विनोद पाठक एंड ऑन द हारमोनियम बाय अशोक कुमार। दिस प्रोग्राम वाज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7। आज के कार्यक्रम में सुनते हैं मिश्र वाद्य संगीत। प्रारंभ में सुनते हैं सितार वादन। कलाकार है विदुषी जया विश्वास। आपने सितार पर प्रस्तुत किया राग नटभैरव सुनते हैं। विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर है रघुराज तुलसी बाग वाले। तो आइए सुनते हैं सितार पर राग नटभैरव, कलाकार जया विश्वास।

अभी आप सुन रहे थे विदुषी जया विश्वास द्वारा प्रस्तुत सितार पर राग नट भैरव। आपके साथ तबले पर थे रघुराज तुलसी बाग वाले। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं सरोद वादन। कलाकार है जरीन दारूवाला। आपने सरोद पर प्रस्तुत किया राग भटियार सुनते हैं। आपके साथ तबले पर है विभव नागेशकर।

अभी आप सुन रहे थे सरोद वादन, कलाकार विदुषी झरीन दारूवाला। आपके साथ तबले पर थे विभव नागेशकर। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। रागम 24/7 हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं तीन ताल में तबला वादन. आज के कलाकार हैं देवेंद्र कांति चक्रवर्ती. आज आपके साथ हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं हिरणमोय मित्रा. तो आइए सुनते हैं तीन ताल में तबला वादन, कलाकार देवेंद्र कांति चक्रवर्ती.
2: दिस इज रागम 24/7 एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस इवनिंग वी फर्स्ट प्रेजेंट अ तबला रिसाइटल. लिसन टू अ तबला रिसाइटल इन तीन ताल बाय देवेंद्र कांति चक्रवर्ती. Accompanying on the harmonium, Hiranmoy Mitra. Now, listen to a tabla recital in Teen Tal by Devendra Kanti Chakraborty.

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप तीन ताल में तबला वादन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे देवेंद्र कांति चक्रवर्ती। आज आपके साथ हारमोनियम पर साथ दे रहे थे हिरण मोय मित्रा। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग मिश्र देश, राग मिश्र पीलू और राग मिश्र कौशी ध्वनि में ठुमरी और दादरा। कलाकार हैं सुचेता गंगोपाध्याय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं असित कुमार जाना और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं रतन भट्टाचार्य। सुचेता

0: गांगुली अपने गायन का आरंभ राग मिश्र देश में ठुमरी से कर रही हैं। तो आइए सुनते हैं राग मिश्र देश में ठुमरी।
1: यू आर लिसनिंग टू अ तबला रिसाइटल इन तीन ताल बाय देवेंद्र कांति चक्रवर्ती एकम्पानिंग ऑन द हारमोनियम हिरणमय मित्र। दिस इज रागम 24/7 एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। कॉन्टिन्यूइंग द कॉन्सर्ट वी नाउ प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी वोकल रेंडिशन। लिसन टू ठुमरी and Dadra in Rag Mishra Desh, followed by Mishra Pilu and Mishra Kaushik Dhwani. Our artist this evening, Sucheta Ganguly, accompanying on the tabla, Asit Kumar Jana, and on the harmonium, Ratan Bhattacharya. Now, listen to a Thumri and Dadra in Rag Mishra Desh, followed by Mishra Pilu and Mishra Kaushik Dhwani by Sucheta Ganguly.

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग मिश्र देश में ये ठुमरी सुन रहे थे। कलाकार थी सुचेता गंगोपाध्याय। सुचेता गंगोपाध्याय अपने गायन का क्रम जारी रखते हुए अब प्रस्तुत करने जा रही हैं राग मिश्र पीलू दादरा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये राग मिश्र पीलू दादरा।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग मिश्र पीलू दादरा सुन रहे थे। कलाकार थी सुचेता गांगुली। सुचेता गंगोपाध्याय अपने गायन का समापन राग मिश्र कौशिक ध्वनि में एक दादरा से कर रही हैं। तो आइए सुनते हैं राग मिश्र कौशिक ध्वनि में ये दादरा।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग मिश्र कौशिक ध्वनि में दादरा सुन रहे थे। कलाकार थी सुचेता गंगोपाध्याय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे असित कुमार जाना।

0: और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे रतन भट्टाचार्य। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू आर लिसनिंग टू अ ठुमरी एंड दादरा इन राग मिश्र देश फॉलोड बाय मिश्र पीलू एंड मिश्र कौशिक ध्वनि बाय सुचेता गांगुली accompanying on the tabla Asit Kumar Jana and on the harmonium Ratan Bhattacharya. This program was recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में खाल गायन. कलाकार है सुरेंद्र शंकर अवस्थी. राग है सावनी नट. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है. बोल है सब मिल गा. द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है जिसके बोल है आज सब मिल मंगल गाओ. संगत कलाकार हैं तबले पर स्माइल दद्दू खां, सारे पर समत खां. दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल. नाउ लिसन टू अ हिंदुस्तानी वोकल राइटल बाय सुरेंद्र शंकर अवस्थी. दिस रेंडेशन कमेंस विद अ राग सावनी नट. द अकंपनीमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय स्माइल दद्दू खां ऑन द तबला एंड समद खां ऑन द सारंगी.

आप सुन रहे हैं ख्याल गायन, कलाकार हैं सुरेंद्र शंकर अवस्थी। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय सुरेंद्र शंकर अवस्थी। ये है रागम पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे सुरेंद्र शंकर अवस्थी से राग छाया नट। एक तानिबद्ध विलंबित ख्याल के बोल हैं आज बधावा गाओ। द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं झनन झनन झन झन बाजे बिछुआ। कंटिन्यूइंग द वोकल रिसाइटल बाय सुरेंद्र शंकर अवस्थी, यू विल लिसन राग छाया नट।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में ख्याल गायन। कलाकार थे सुरेंद्र शंकर अस्थी। संगत कलाकार थे तबले पर यदुनंदन गोस्वामी और सारंगी पर समत खां। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय सुरेंद्र शंकर अवस्थी। द अकंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय यदुनंदन गोस्वामी ऑन द तबला एंड समत खां ऑन द सारंगी। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एंड एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH अनवरत भारतीय संगीत. आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे स्वागता मुखर्जी का शास्त्रीय गायन. सर्वप्रथम प्रस्तुत है राग जोगिया. विलंबित तीन ताल के बोल हैं भजले गुरु का नाम मनवा. तबले पर संगत कर रहे हैं पार्थो प्रतिम दास तथा वॉयलिन पर संगत कर रहे हैं भानु प्रताप बनर्जी.

अभी आप सुन रहे थे स्वागता मुखर्जी द्वारा गाया राग जोगिया। तबले पर संगत कर रहे थे पार्थ प्रतिम दास तथा वॉयलिन पर संगत कर रहे थे भानु प्रताप बनर्जी। अब प्रस्तुत है इन्हीं का गाया राग छायानट। विलंबित एक ताल के बोल हैं एरी अब गुथला और द्रुत तीन ताल के बोल हैं प्यारी लगली लाडली।

अभी आप सुन रहे थे स्वागता मुखर्जी का गाया राग छायानट। अब प्रस्तुत है इन्हीं का गाया राग देश। झप ताल में निबद्ध रचना के बोल हैं, देखो रीना माने श्याम। तबले पर संगत कर रहे हैं पार्थ प्रतिम दास तथा वॉयलिन पर संगत कर रहे हैं भानु प्रताप बनर्जी।

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे स्वागता मुखर्जी द्वारा गाया राग देश। तबले पर संगत कर रहे थे पार्थ प्रतिम दास तथा वॉयलिन पर संगत कर रहे थे भानु प्रताप बनर्जी। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है राजेंद्र सिंह का गाया राग तोड़ी. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है. बोल हैं लाल मनाए और तीन ताल में निबद्ध द्रुत रचना के बोल हैं अल्लाह जाने अल्लाह जाने. तबले पर आपकी संगति की है नवाब अली खान ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने.
2: This is the Ragam Channel, All India Radio. We now present for you a vocal recital by Shri Rajendra Singh. He is accompanied on the tabla by Nawab Ali Khan and on the sarangi by Pandit Bharat Chand Goswami. Shri Rajendra Singh first presents Rag Todi, in which he sings the Vilambit Khayal set to Ektal. The lyrics are Lal Manaye. This will be followed by a composition in Drut Khayal, set to Teen Tal. The lyrics of this composition are Allai Jane, Allai Jane.

0: अभी आप राजेंद्र सिंह का गाया राग तोड़ी सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी नवाब अली खान ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने। और लीजिए अब सुनिए राजेंद्र सिंह का गाया राग अलैया बिलावल। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं दैया कहाँ गए वो लोग, और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं लाडली लाल फूले आवत। तबले पर आपकी संगति की है नवाब अली खान ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने।
1: दैट वॉज राग तोड़ी। कंटिन्यूइंग विद हिज वोकल रिसाइटल, श्री राजेंद्र सिंह नाउ प्रेजेंट्स राग अलैया बिलावल, इन विच ही सिंग्स फर्स्ट अ ख्याल सेट टू विलंबित एकताल। द लिरिक्स आर दैया कहाँ गए वो लोग। दिस विल बी फॉलोड बाय द छोटा ख्याल सेट टू द्रुत तीन ताल। द लिरिक्स आर लाडली लाल फूल आवत।

0: अभी आप राजेंद्र सिंह का गाया राग अलहैया बिलावल सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी नवाब अली खान ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद राग अलहैया बिलावल वी कम टू द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम विच फीचर्ड अ वोकल रिसाइटल बाय श्री राजेंद्र सिंह। He was accompanied on the tabla by Nawab Ali Khan and on the sarangi by Pandit Bharat Bhushan Goswami. This was a presentation of All India Radio Delhi.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हर पल हर दिन भारतीय संगीत, यह है रागम DTH चैनल। प्रस्तुत है भक्ति संगीत और आइए आप सुने एक भजन वाणी जयराम की आवाज में, मेरे तो गिरधर गोपाल।